0: रस स्वाद कराए।
1: माध्य आचार धर्म सुरक मिंसा कसने प्रोर्ति समग्र।
2: नेट न्यूज़।
3: सत्य अंतया।
4: सत्य अंतया।